अब चल चल चली लाल, अब चल चल चली डली लाल,月光照我入梦乡，鸟儿催我快梳妆，玫瑰花开遍地香，五月姑娘新欢唱，鸟儿飞来又飞去，燕子呢喃把花香，她说我是快乐姑娘，到处听见我歌唱。阿巴扎扎扎扎扎里啦，阿巴扎扎扎扎扎里啦，阿巴扎扎扎扎扎里扎里啦，阿巴扎扎扎扎扎里啦，阿巴扎扎扎扎扎里啦，阿巴扎扎。